0: तिन घर ब्राह्मण पूरे नाद ना ब्यावे वो साध। कुड़ी राज कुड़ा व्यापार कुड़ बोल करे यार, श्रम धर्म का डेरा दूर नान कुड़ रे भरपूर।
1: मथे टिका तेल कुतिक खाई हथ शुरी कसा, नील वस्त्र

जी गुरु गरीब निवास यंत्र जामी सच्चे पातशाह जी महाराज साहिबे कमाल साहिब धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज तिना दे पावन स्थान तखत सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब विखे पावन स्थान दियां हाजरियां परदे गुरु कियां संगतां वल्लों गुरबाणी दे शब्द कीर्तन सत्कार वजों बेअंत माया अरदास कराई है पातशाह जी सतगुरु जी आप नाम जानी जान हो सतगुरु जी कृपा करनी रहमत बख्शिश करनी दे अरुखता दे नाम दे दात कारज राज करनी आशा मनसा पूर्ण करनी हर मैदाने हर कार्य पुत्र करनी कार्य राज करनी यात्रा

नाई वाहिगुरु नानक दास तेरी शरणाई वाहिगुरु सदा सदा बल्ले हारे सदा सदा बल्ले हारे सचिया सदा सदा बल्ले हारे तदिया गे अरे दास है मारी वाहिगुरु तदिया गे अरे दास है मारी वाहिगुरु जियो बैंड सब तेरा जियो बैंड सब तेरा सचिया बादशाह जियो बैंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वड्डी आई वाहिगुरु कहो नानक सब तेरी वड्डी आई कोई ना वो ना गया ने मेरा ना वो ना जाने मेरा सचिया बादशाह कोई ना वो ना जाने मेरा वाहिगुरु जी का खालसा।

फते गज के जयकार जावे सो निहाल हो जावे सत श्री अकाल गुर बर अकाल तेग तेग फते गुरु पंथ खालसा जी की दिनों दिन चढ़दी कला रखनी सचे।

अलख प्रग अवगत अवसुता जात पात जय चेहन्ना वरना अभिगत देव अशय अन भरमा सबको काल सबन को करता रोग शोक दोकन को हरता एक चेत जय एक छिन्न ध्यायो काल फांस के बीच न आयो तो प्रसाद कबित कत हूँ सुचेत हो के चेतना को चार कियो कत हूँ अचेत हो के सोवत अचेत हो कत हूँ भिकारी हो के मांगत फिरत भी कहूँ माँ दान हो के मांगे धन देत हो कहूँ माँ राजत को दीजत अनंदान कहूँ माँ राजन ते छीन छेत लेत हो कहूँ बेदरीत कहूँ तास विपरीत कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो कहूँ जज गंधर्व रह कहूँ विद्याधर कहूँ भय किन्नर पिशाच कहूँ प्रेत हो कहूँ होय के हिंदुआ गायत्री को गुपत जपयो कहूँ होय के तुर का पुकारे बांग देत हो कहूँ कोप काव होय के पुराण को बढ़त मत का तुहूँ कुरान को निदान जान लेत हो कहूँ बेदरीत कहूँ तास विपरीत कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो कहूँ देवतान के दीवान में विराजमान कहूँ दानवान को गुमान मत देत हो कहूँ इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी सी कहूँ इंद्र पदवी छिपाई छीन लेत हो का तुहू बिचारा विचारत को विचारत हो कहूँ निज नार पर नार के निकेत हो कहूँ बेदरीत कहूँ तास विपरीत कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो कहूँ शस्त्रधारी कहूँ विद्या के विचारी कहूँ मारत हारी कहूँ नार के निकेत हो कहूँ देववाणी कहूँ शारदा भवानी कहूँ मंगला मिटानी कहूँ श्याम कहूँ सेत हो कहूँ धर्म धामी कहूँ सर्व ठोर गामी कहूँ जति कहूँ कामी कहूँ देत कहूँ लेत हो कहूँ बेदरीत कहूँ तस विपरीत कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो कहूँ जटाधारी कहूँ कंठीधर ब्रह्मचारी कहूँ जो साधी कहूँ साधना करत हो कहूँ कान फारे कहूँ डंडी होय पधारे कहूँ फूक फूक पान को पृथ्वी पर धरत हो कत हूँ सिपाही होके साधा सिल्ला हन कहूँ छत्री होके अर मारत मारत हो कहूँ भूम भार को उतारत हो महाराज कहूँ भाव भूतन की भावना भरत हो कहूँ गीतनाद के निदावन को बतावत कहूँ नृत्यकारी चित्रकारी के निधान हो कत हूँ पयुग हो के पीवत पीवावत हो कत हूँ मयुग कहूँ मद पान हो कहूँ माँ सुर हो के मारत मासन को कहूँ माँ देव देवतान के समान हो कहूँ माँ दीन कहूँ द्रव के अधीन कहूँ विजाम प्रवीण कहूँ भूम कहूँ भान हो कहूँ अकलंक कहूँ मारत मयंक कहूँ पूरन प्रजंग कहूँ शुद्धता की सार हो कहूँ देव धर्म कहूँ साधना के हरम कहूँ कुतत कुकरम कहूँ धर्म के प्रकार हो कहूँ पवन हारी कहूँ विद्या के विचारी कहूँ जोगी जति ब्रह्मचारी नर कहूँ नार हो कहूँ छतधारी कहूँ छाला धरे छल भारी कहूँ छकवारी कहूँ छल के प्रकार हो कहूँ गीत के गवैया कहूँ बेन के बजय कहूँ नृत्य के नचय कहूँ नर को आकार हो कहूँ वेद बानी कहूँ कोक की कहानी कहूँ राजा कहूँ रानी कहूँ नार के प्रकार हो कहूँ बेन के बजैया कहूँ धेन के चरैया कहूँ लाखन लवैया कहूँ सुंदर कुमार हो शोधता किसानों के संतन के प्राणों के दाता महादान हो के निर्दोषी निरंकार हो निर्जोर निरूप हो के सुंदर स्वरूप हो के भूपन के भूप हो के दाता महादान हो प्राण के बचैया दूध पूत के दिवैया रोग शोक के मिटैया खी तो मानी महामान हो विद्या के विचार हो के अद्वय अवतार हो के शुद्धता की सुरत हो के शुद्धता की शान हो जोबन के जालों के कालों के कालों के सतरन के सूलों के मित्रन के प्राण हो कहूँ ब्रह्म बाद कहूँ विद्या को विखाद कहूँ नाद को निदान कहूँ पूरन भगत हो कहूँ बेदरीत कहूँ विद्या की प्रतीत कहूँ नीत अनीत कहूँ ज्वालासी जगत हो पूरन प्रताप कहूँ।

रब काल सर्व ठार एक से लगत हो। तो प्रसाद सवैये श्राव के शुद्ध समूह सिधान के देख फिरियो घर जोग जति के सूर सुराधन शुद्ध सुदानिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को ना देखे प्राण पति के श्री भगवान की भाई कृपा हूते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनुपतंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कुदत पवन के गौन को जात निवारे भारी भुजान के भू बली विन्यावशीष न जात बिचारे एते भय तो कहां भय भूपदंत को नांगी पाए पधारे जीत फिरे सब दे दिशान को बाजर ढोल मृदंग नकारे गुंजत गुड़ गजान के सुंदर हिंसति है राज हजारे भूत भविक भगवान के भूपत कौन गने नहीं जात विचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे तीरथ नहांद यादम दान सो संजम देव अनेक विशेख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान समान के पेख है पौन हार जति जत धार सबे सो विचार हजारक देख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेख है शुद्ध सुपा दुरंत दुपा सो सासना दुर्जान तलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हल्लाय न हलाएंगे तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलाएंगे श्री पर श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहां निदान चलाएंगे वीर अपार बड़े वरियार विचारे सार की धार बछैया तोर देर मलिन मवासन माते के जान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हर सो बातन ही चक चार लवैया साहेब श्री सबको सिर नायक जाचन एक सो एक दवैया दानव देव फनी निशाचर भूत भगवान जपेंगे जीव जीते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जाए धुन पापन के पुंज खपेंगे सात समूह प्रसन्न फिरे जग सत्र समय लोग जपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नराधिप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजाधिक दान एक स्वयं पर साज भरेंगे ब्रह्म सर्वशन सचिपत अंत फसे जम फांस परेंगे जे नर श्रीपत के प्रस है पग ते नर फेर न दे धरेंगे कहा भयो जो दो लोचन बूंद के बैठ रहे हो भग ध्यान लगायो नाथ प्रिय लिए सा समुद्र लोक गयो पर लोक गवायो बासकियो बिख्यान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो वैद बितायो साचे कहा सो न ले हो सब जेन प्रेम कियो तेन ही प्रभ पायो काहू ले पाहन पूज धरयो सिर काहू ले लिंग गरे लटकायो काहू लखियो रावासी दिशा में काहू पछा को शीस निवायो को भूतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन धायो कूर क्रिया और जो सब ही जाग श्री भगवान को भेद ना पायो तो प्रसाद तोमर छंद हर जन्म मरण विहीन द चार चार प्रवीण अकलंक रूप अपार अनछेद तेज उदार अनभेद रूप दुरांत सब जगत भगत महंत जस तिलक भू भृत भान द चार चार निधान अकलंक रूप अपार सब लोग शोक विदार कल काल कर्म विहीन सब कर्म धर्म प्रवीण अनखंड अतुल प्रताप सब थापियो जय थाप अनखेद भेद अछेद मुख चार गावत वेद जय नेत निगम कहंत मुख चार बकद बे अंत अन भेद अतुल प्रताप अनखंड अमित थाप जय कीन जगत पसार रचियो विचार विचार अनंत रूपा खंड अतुल प्रताप प्रचंड जय अंड ते ब्रह्मांड कीने सो चौदह खंड सब कीन जगत पसार अभ्यक्त रूप उदार जय कोट इंद्र निपार कई ब्रह्म विषण विचार कई राम कृष्ण रसूल बिन भगत को ना कबूल कई सेंद बिंद इंद्र कई माछ काछ फनिंद्र कई देव आदि कुमार कई कृष्ण विषण अवतार कई इंद्र बार गुहार कई वेद अमुचार कई रुद्र छुद्र स्वरूप कई राम कृष्ण अनूप कई कोप का भणंत कई वेद भेद कहंत कई सास सिमृत बखान कहू कतत ही सो पुराण कई अगन होत्र करंत कई उर्द ताप दुरंत कई उर्द भाव सन्यास कहू जोग भेद उदास कहू नीली गरम करंत कहू पौन हार दुरंत कहू तीर दान पार कहू जग करम उदार कहू अगन होत्र अनूप कई न्याय राज विभूत
कहूं शास्त्र सिमरत रीत कहूं वेद स्यों विपरीत कई देश फिरंत कई एक ठौर स्थंत कहूं करा जल में जाप कहूं सहतन प्रताप कहूं बाज बने कर अंत कहूं ताप तने सहंत कहूं गृहस्थ धर्म अपार कहूं राजरीत उदार कहूं रोग रहता भरम कहूं कर्म करत अकर्म कहूं से ब्रह्म स्वरूप कहूं नीत राज अनूप कहूं रोग शोक विहीन कहूं एक भगत अधीन कहूं रंग राजकुमार कहूं वेद व्यास अवतार कई ब्रह्म वेद रटंत कई सेक ना उशरंत बैराग कहूं सन्यास कहूं फिरत रूप उदास सब कर्म फोकट जान सब धर्म नहपल मान बिन एक नाम आधार सब कर्म भरम विचार तो प्रसाद लगुन राज छंद जले हरि थले हरि उरे हरि बने हरि गिरे हरि गुफे हरि छिते हरि नभे हरि ई हरि उ हरि जिमि हरि जमा हरि अलेख हरि अभे करि अधोख हरि अलवैग हरि अकाल हरि अपाल हरि अछेद हरि अभेद हरि अजंत्र हरि अमंत्र हरि सो तेज हरि अतंत्र हरि अजात हरि अपाद हरि अमित्र हरि अमाद हरि अरोग हरि अशोक हरि अभर्म हरि अकर्म हरि अजय हरिया वय हरिया भेद हरिया छेद हरि अखंड हरिया भंड हरिया दंड हरि प्रचंड हरि अतेव हरिया भेव हरिया जेव हरिया छेव हरि भजो हरि थपो हरि तपो हरि जपो हरि जलस्तुई थलस्तुई नदस्तुई नदस्तुई वृक्षस्तुई पतस्तुई छितस्तुई ऊर्ध्वस्तुई भजस्त्वंग भजस्त्वंग रटस्त्वंग ठटस्त्वंग जिमी तुहि जमा तुहि मकी तुहि मका तुहि अभू तुहि अभय तुहि अछू तुहि अक्षय तुहि जतस्तुहि व्रतस्तुहि गतस्तुहि मतस्तुहि।

खूक मल हरि गज गद हबिबू दारी गिदुआ मसान वास करे करत है। घुगू मड वासी लगे डोलत उदासी मृग तरबर सदी मोन सदे मरत है। बिंद के सदयता हीज की बटैया देश बंदरा सदी उपाय नंगे फिरत है। अंगना अधीन काम क्रोध में प्रवीण ज्ञान के विहीन छीन कैसे के तरत है। भूत बदन चारी चेत छौना सब दूधाधारी पान के आहारी सो भुजंग जानियत है। तृण के भछैया दान लोभ के तजैया ते तो गौवन के जैया ब्रेक भैया मानियत है। नब के उड़ैया तय पंछी की बडैया देर बगला बिडाल ब्रेक ध्यानी ठानियत है। जेते बड़े ज्ञानी तीनों जानी पे बखानी ना ऐसे ना प्रपंच मन भूलानी आते है। भूम के बसैया जाए भूचरी के जैया कह नब के उड़ैया सुचरैया के बखानी है। फल के भचैया ताए बांदरी के जैया कह आदेश फिर दे तो भूत के पछानी है। जल के तरैया को गंगेरी सी कहत जग आग के भचैया सो चकोर सम मानी है। सूरज सिवैया ताए काल की बढ़ाई दे चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानी है। नारायण कच्छ मच तेंदुआ कहत सब कौल नाव कौल जय ताल में रहत है। गोपीनाथ गुजर गोपाल सब धेर जारी रिखी के नाम के महंत लही अत है। माधव भवर ओट रुको कन्हैया नाम कांस को बदय जम दूध कही अत है। मूट रूट पीटत न गुड़ता को भेद पावे पूजन न ताए जाके राखे रही अत है। विश्वाल जगत काल दीन दयाल बैरी साल सदा प्रत पाल जम जालते रहत है। जोगी जटा धारी सती साचे बड़े ब्रह्मचारी ध्यान का धूप प्या दे सहत है। निवली करम जल होम पावक पवन होम अधोमुख एक पाए ठाडे न बहते है। मानो फनिन देव दानो न पावे भेद भेदा कतेब नेत नेत कह कहत है। नाचत फेरत मोर बादर करत घोर दामनी अनेक भाव करे ओई करत है। चंद्रमा ते शीतल न सूरत तपज तेज इंद्र सोना राजा भाव भूव को भरत है। शिव से तपस्या ब्रह्मा से न बेचारी सनत कुमार सी तपस्या नानत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराए फिरत है। एक शिव भय एक गए एक फेर भय रामचंद्र किशन के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा और विष्णु के दे वेद और पुराण के दे सिमरत समूहन के होए होए बिताए है। बोंदी मदार के दे असनी कुमार के दे अंसा अवतार के दे कालबद भय है। पीरा पिकांबर के दे गने न पर देते भूमि ते हो के फेर भूमि ही मिलाए है। जोगी जाति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र की छाया कई कोसलो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रव को दलत है। मान से मही पौ दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भोज दंड को करत है। दारा से दिल्ली सर दुर्योधन से मान धारी भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है। सिद्ध दे करे अनेक तोपची कपन भेष पोस्ती अनेक दानी बाबत शीश कहा भयो माले जो पे काटते अनेक दंड सोतन डंडा दास टांग अथ तीस का कहा भयो रोगी जो पे डारे रहे उर्दमुख मन ते न मुड़ने हरायो आज इसका। कामना अधीन सदा दामना प्रवीण एक भावना भीन कैसे पावे जग जिस का। शीश पट कत जाके कान में खजूरा दसे मूंड छंड कत मित्र पुत्रों के सोग सा। आग को चरैया फल फूल को बछैया सदा बन को भ्रमया और दूसरों न भोग सा। कहा भयो भेड़ जोग सी वृक्षण सा माटी को बछैया बोल बूझ लीजे जोग सा। कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भेटे पर लोग सा। नाचोई करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करोई करत है। एक पाए ठाडे सदा बन में रहत ब्रेज फूक फूक पाँव भूम श्रावक धरत है। पाहन अनेक युग एक ठार बास करे कागर चिल देश देर बिचरत है। ज्ञान के विहीन मादान में न हुजलीन भावना यकीन दिन कैसे के तरत है। जैसे एक स्वांगी कहूँ जो गया बैरागी बने कब हूँ सन्यास भेद बन कर दिखावई। कहूँ पवन हारी कहूँ बैठे लाए तारी कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई। कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पे लगावे बारी कहूँ दंड धारियों के लोगन भ्रमावई।
कामना अधीन परे नाचत नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई। पांच बार गीदर पुकारे पर शीत काल कुंचर गदहा अनेक दा पुकार ही कहा भय जो मैं कलवत्र लियो कांसी बीच चीर चीर चोटा कुठारन सो मार ही कहा भयो फांसी डार बूढ़े जड़ गंगदार डार डार फास्टक मार मार डार ही डूबे नरक धार मोड़ ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन कैसे ज्ञान को विचार ही।

ਵਸੀ ਸੋਈ ਪੂਜਾ ਨਿਵਾਜ ਹੋਈ ਮਨ ਸਭੇ ਏਕ ਭੈ ਅਨੇਕੋ ਭਰਮਾਉ ਹੈ। ਦੇਵਤਾ ਦੇਵ ਜਜ ਗੰਧਰਵ ਤੁਰਗ ਹਿੰਦੂ ਨਿਆਰੇ ਨਿਆਰੇ ਦੇਸਨ ਕੇ ਭੇਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੈਣ ਇੱਕ ਕਾਨ ਇੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਨ ਖਾਕ ਬਾ ਦਸ ਆਪ ਕੋ ਰਲਾਓ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਭੇਗ ਸੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਕੁਰਾਨ ਹੋਈ ਏਕ ਹੀ ਸਰੂਪ ਸਭੈ ਏਕ ਹੀ ਬਨਾਓ ਹੈ। जैसे आग ते कनुका गोड आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है धूर के कनुका फिर धूर ही समाएंगे। जैसे एक नद ते तरंग को डुबजते पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए ताही ते ऊपर सब ताही में समाएंगे। केते काछ मज के दे उन को करत भज केते अच्छे वच हो सबच उड़ जाएंगे। केते ना बीज आज पाज को करेंगे भाछ केतक प्रत्यक्ष होए बचाए खाए जाएंगे। जल का थल का गगन के गान का काल के बनाए सब काल ही चबाएंगे। तेज युवा तेज में तेज जैसे तेज लीन ताही ते ऊपर सब ताही में समाएंगे। कुकत फिरत केते रोवत मरत केते जल में डुबत केते आग में जरत है। केते गंग वासी केते मदीना मक्का निवासी केतक उदासी की भ्रमाए फिरत है। करवा सहत केते भूम में गढ़त केते सुआ पे चढ़त केते दुख का भरत है। ज्ञान में उड़त केते जल में रहत केते ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। शोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी घस हारे चंदन लगाए हरे चोआचार पूजे हारे पाहन चढ़ाए हरे लापसी गा हरे गोरन मनाए हरे मड़ी मट लीप हारे भीतन लगाए हरे छापसी गाय हारे गंधर्व बजाए हरे किन्नर सब पज हारे पंडित तपंत हरे तापसी तोप्रसाद भुजंग प्रयाद छंद नारायण नारंगंग ना रूपंग ना रेखंग ना रागंग नारंगंग ना रूपंग ना रेखंग ना मोहंग ना क्रोहंग ना द्रोहंग ना द्वैखंग ना कर्मंग ना भर्मंग ना जन्मंग ना जातंग ना मित्रंग ना सत्रंग ना पितरंग ना मातंग ना नेहंग ना गेहंग ना कामंग ना धामंग ना पुत्रंग ना मित्रंग ना सत्रंग ना भामंग अलेखंग अभेखंग अजोनी स्वरूपंग न सदा सिद्धता बुद्धता वृद्ध रूपंग नहीं जाने जाई कछु रूप रेखंग कहा बासता को फिरे कौन भेखंग कहा नामता को कहा कह कहा वह कहा कह बखानो कह मैं न आवे ना रोगंग ना सोगंग ना मोहंग ना मातंग ना कर्मंग ना भर्मंग ना जन्मंग ना जातंग अद्भैकंग अभेकंग अजूनी सरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परे अंग पराप्रम प्रज्ञा प्रकाशी अछेदंग अछे आद अद्वै अविनाशी ना जातंग ना पातंग ना रूपंग ना रंगे नमो आद भंगे नमो आद भंगे किते कृष्ण से कीट कोट उपाय उसारे गढ़े फेरे मेटे बनाए अगाधे अभय आद अद्वै अविनाशी परे अंग परा परम पुराने प्रकाशी न आदंग न ब्यादंग अगाधंग स्वरूपे अखंडत प्रतापद अच्छा विभूते न जन्मंग न मरनंग न वर्णंग न ब्यादे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे न नेहंग न गेहंग सनेहंग सनाते उदंडे मंडे प्रचंडे प्रमाथे न जाते न पाते न सत्रे न वितरे सो भूते भविखे भवाने अचित्रे नारायंग नारंकंग न रूपंग न रेखंग न लोभंग न चोभंग अभूतंग अभेखंग न सत्रंग न मित्रंग न नेहंग न गेहंग सदेवंग सदा सर्व सर्वत्र सनेहंग न कामंग न क्रोधंग न लोभंग न मोहंग अजोनी अछे आदत्वे अजोहंग न जन्मंग न मरनंग न वर्णंग न व्यादंग न रोगंग न शोकंग अभय निर्विखादंग अछेदंग अभेदंग अकर्मंग अकालंग अखंडंग अभंडंग प्रचंडंग अपालंग ना तातंग ना मातंग ना जातंग ना कायंग ना नेहंग ना गेहंग ना भरमंग।

विभुक्तंगा छे आद अच्छा स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे नाने हंगना गे हंगना सोकंग ना साकंग परे अंग पवित्रंग पुनीतंग ताकंग ना जातंग ना पातंग ना मित्रंग ना मंत्रे नमो एक तंत्रे ना धर्मंग ना भरमंग ना धर्मंग ना जाके ना भरमंग ना जरमंग ना कर्मंग ना बाके ना सतरंग ना मित्रंग ना पुत्रंग स्वरूपे नमो आद रूपे कहूं कंज के मन के भरम फूले कहूं रंग के राज के धर्म लूले कहूं देश के भेष के धर्म धामे कहूं राज के साज के बाज तामे कहूं अक्षर के पक्षर के सिद्ध साधे कहूं सिद्ध के बुद्ध के वृद्ध लाधे कहूं अंग के रंग के संग देखे कहूं जंग के रंग पेखे कहूं धर्म के कर्म के हरम जाने कहूं धर्म के कर्म के भरम माने कहूं चार चेष्टा कहूं चित्र रूपं कहूं परम प्रज्ञा कहूं सर्व भूपं कहूं ने गृहं कहूं देह दोखं कहूं गति रोग के सोग सोकं कहूं देव विद्या कहूं दैत बानी कहूं जाच गंधर्व किन्नर कहानी कहूं राजसी साधकी तामसी हो कहूं जोग विद्या धरे तापसी हो कहूं रोग रहता कहूं जोग जुगतं कहूं भूम की भुगत में भरम भुगतं कहूं देव कन्या कहूं दान भी हो कहूं जरज विद्या धरे मान भी हो कहूं राशी हो कहूं राज कन्या कहूं श्रेष्ठ के रेष्ठ के पृष्ठ पन्या कहूं श्रेष्ठ के पृष्ठ के रेष्ठ पन्या कहूं वेद विद्या कहूं बेवानी कहूं को की काव कथा कहानी कहूं अद्र सारंग कहूं भद्र रूपं कहूं भद्र वाणी कहूं शुद्र स्वरूपं कहूं वेद विद्या कहूं काव रूपं कहूं चेष्टा चार चित्रंग स्वरूपं कहूं परम पुराण को पार पावे कहूं बैठ कुरान के गीत गावे कहूं सुत से कहूं कहूं ब्रह्म धर्म कहूं मृद अवस्था कहूं बाल कर्म कहूं ज्वाल स्वरूपं जरा रह देहं कहूं ने देहं कहूं त्याग गृहं कहूं जो भोगं कहूं रोग रागं कहूं रोग हर्ता कहूं भोग त्यागं कहूं राज साजं कहूं राज रीतं कहूं पूर्ण प्रज्ञा कहूं परम प्रीतं कहूं आर भी तोर की पार सी हो कहूं पहल भी पस्त भी संस्कृति हो कहूं देद भाग्या कहूं देव बानी कहूं राज विद्या कहूं राजधानी कहूं मंत्र विद्या कहूं तंत्र सारं कहूं जंत्र रीतं कहूं शस्त्र धारं कहूं होम पूजा कहूं देव अर्चा कहूं पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूं बीन विद्या कहूं गान गीतं कहूं मिले भाग्या कहूं वेद रीतं कहूं नृत्य विद्या कहूं नागवानी कहूं गारडू गुण कथा कहानी कहूं अक्षरा पक्षरा मक्षरा हो कहूं वीर विद्या भूतंग प्रभा हो कहूं छैल छाला धरे छत्र धारी कहूं राज साजंग धी राजाधिकारी नमो नाद पूरे सदा सिद्ध दाता अच्छे दी अच्छे आदत व विधाता ना तरस्तंग ना ग्रस्तंग समस्तंग स्वरूपे नमस्तंग नमस्त

अनभूते जन छिज गाद करता सजीव हरता असनात आसन अडोल अनभूत कर्म दाता दयाल अनभूत धर्म जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जा जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मान जय कर्म भरण नहीं धर्म ध्यान जय ने गे ने व्योदान जय जात पान नहीं शत्रु मित्र जय ने गे

जय नाम थाम नहीं बरक ब्या, जय रोग शोक नहीं सत्र साज, जय त्रास बाज नहीं दे ना, जय आद अंत नहीं रूप राज, जय रोग शोक नहीं जोग जुगा, जय त्रास आद नहीं भूम भुगत, जय काल ब्याल कटे हो न अंग, अच्छा स्वरूप अखय अभंग, जय नेत नेत उचरंत बे, जय अलग रूप कथत कते, जय अलग रूप आसन अडोल, जय मित तेज अक्षय तोल, जय ध्यान काज मुंजन अनंत, कई कलप ए कलप जोग साधन दुरंत, तन शीत घाम बरखा सहंत, कई कलप एक आसन बितंत, कई जतन जोग विद्या विचार साधन, तदप पावत न पार, कई उर्द बादेशन भ्रमंत, कई उर्द मत पावक झुलंत, कई सिमरे शास्त्र उच्चरंत वेद, कई कोप काद गथद कते, कई अगन होत्र कई पौन हार, कई करत कोट मृत को आहार, कई करत साग पै पत्र भाष्य नहीं तदप दे होवत प्रत्यक्ष, कई गीत गान गंधर्व रीत, कई वेद शास्त्र विद्या प्रति, कहूं वेद जग कहूं वेद री जग आदि करम, कहूं अगन होत्र कहूं तीरा धर्म, कई देद देद भाखा रटन नहीं, कई देद देद विद्या पढ़ंत, कई करत भांत भांतन विचार नहीं, नायक तास पायत न पार, कई तीरा तीरा धर्म सो भरम, कई अगन होत्र कई

कहूँ राज रीत कहूँ जोग धर्म कहूँ कई सिमरे शास्त्र उचरा सो कर्म निवली आद कर्म कहूँ हस्तदान कहूँ अश्वमेध मक्को बखान कहूँ करत ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ वृद्धचार कहूँ करत जज गंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घ दान कहूँ पितृ कर्म कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत शास्त्र सिमरे उचार।

कई जल निवास कई अगन ताप कई जपत उर्ध लटकंत जाप कई जपत जो कल्पं प्रजंत नहीं तदव तास पायत न अंत कई करत गोड विद्या विचार नहीं तदव दृष्ट देखे मुरार बिन भगत सगत नहीं परत पान ब करत होम अर जगदान बिन एक नाम एक चित्त लीन फोकटो सर्व धर्मा विहीन। तो प्रसाद तोटक छंद जय जंपो जुगण जुअब जुअंग भय कंपो मेरे पयाल भुअंग तब तापस सर्व जलेरु थलंग धन चरद इंद्र कुमेर बलंग अनखे स्वरूप अभेद अभियंग अनखंड अभूत छेद छियंग अनकाल अपाल दयाल सुअंग जय ठटिया मेरा काज भुअंग अनखंड अमंड प्रचंड रंग जय रचंग देव अदेव बरंग सब कीनी दीन जमीन जमा जय रचंग शरम मकीन मका जय रागना रूपना रेग रुखंग जय तापना सापना सोग सुखंग जय रोगना सोगना भोग भोंग जय खेद न भेद न छेद छयंग जय जात न पात न मात पितंग जय रचंग छत्री छत्र छितंग जय राग न रेग न रोग भणंग जय द्वैख न दाग न दो गणंग जय अंडा ते ब्रह्मंड रचियो द चार करी न खंड सचियो रसाम तेज अतेज गियो अनुभव पदा प्रचंड लियो श्री सिंदर बिंद नगिंद नगंग श्री जाक्ष गंद्र फणिंद भुजंग रच देव अदेव भेव नरंग नरपाल कृपाल निरपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रच अंडा सेतज उद भुजंग किए देव अदेव सराज पितंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जातना पातना जो जुतंग जय तातना मातना भ्रात सुतंग जय रोगना सोगना भोग भुंग जय जंपर किन्नर जक्ष जुअंग नर नार नपुंसक जाय किए गण किन्नर जाच्छ भुजंग दिए गज बाज रथाधिक पांत गणंग भूत भवेक भवान तुअंग जय अंडा सेता जे रजंग रज भूमकाल पताल जलंग रज पावक पान प्रचंड बली बन जास कियो फल फूल गली वो मेरा का निवास तंग रज रोज का द चंद्र वृतंग दुध चंद दिनेश दीप जय जय पावक पान प्रचंड मई जय अंड जय खंड अखंड प्रचंड किए जय छत्र उपाय छपाय दिए जय लोक चतर जय चार रचे नर गंधर देव अधेव सचे अनधूत अभूत अछूत मतंग अनगाद अभ्याद अनाद गतंग अनखेद अभेद अछेद नरंग जय चार चतर दस चत्र फिर चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेग रुखंग जय सोग न भोग न जोग जुअंग भो भंजन गंजन आस्तिरंग जय बंदर देव अदेव नरंग गण किन्नर जज भुजंग रचे मण माणग मोती लाल सुचे अन भंज प्रभान गंज वृतंग जय पारना पावत पूर्वतंग अन खंड स्वरूप दंड प्रभा जय जंपत वेद पुराण सभा जय वेद कतेव आनंद कह जय भूत अभूतना भेद लह है जय वेद पुराण कतेव जपै सो संधा दो मुख ताप तपै कई कल्पन लो तब ताप करे न कृपा निद पान पर जय फोकट धर्म सब तज है क्षेत्र कृपा निद को जप है तिव या भो सागर को तर है भ भूल न दे पुनर्

सब प्रताप जगदीश को कहो सकल बेतैन दोहरा को आत्मा स्वरूप है का श्रेष्ठ को विचार कौन धर्म को कर्म है कहो सकल विस्तार दोहरा का जी तब का मरण है कवन सुर कह नरक को सुगड़ा को मूर्ता कहा तरक अवतरक दोहरा को निंदा जस है कवन कवन पाप का धर्म कवन जोग को भोग है कवन कर्म अब कर्म दोहरा कहो सुसम का शोक है दम को कहा कहंत को सूरा दाता कवन कहो तंत को मंत दोहरा कहा रंग राजा कवन हरंग शोक है कवन को रोगी रागी कवन कहो तत मोह तवन दोहरा कवन रिष्ट को पुष्ट है कहा श्रेष्ठ को विचार कवन श्रेष्ठ को भ्रष्ट है कहो सकल

कवन कहा धर्म की हान दोहरा। को सूरा सुंदर कवन कहा जो को सार, को दाता ज्ञानी कवन कहो विचार अविचार। धीरक तिरभंगी छंद दुर्जन दल दंडन असुर बिहंडन दोष्ट निकंदन आद ब्रते चचरासुर मारण पते उदाहरण नरक निवारण गूढ़ गते। अच्छा अखंडे तेर चंडे खंडु डंडे अलखमते जय जय होसी मय का सुन मर्दन रम कपड़दन छत्र छिते आश्री विहंडन दोष्ट निकंदन पोष्ट उडंडन रूपते चंडासुर चंडन वर्ण विहंडन धूम्र विदंसन महक मथे दानव प्रहारण नरक निवारण अधम उधारण उर्द अधे जय जय होसी मय कासुर मर्दन राम कपड़दन आदृते डावरु डवंक बबर भुवंक भुजा फरंक तेज बरंग लंकुड़िया फांदे आयुध बांधे सैन मर्दन काल सुरंग अष्टाय चमके भूकण दमके असिंह झमके फुंग फनंग जय जय होसी मय कासुर मर्दन राम कपड़दन दैत जिणंग चंडासुर चंडन वंड में मंडन खंड अखंडन खून खिते दामनी दमंकण भुजा फरंकण फणी कारण जोध जिते सरदार विबरखन दोष प्रकरकण पुरुष प्रहरकण दोष्ट मथे जय जय होसी मय कासुर मर्दन भूम काल तल उर्दा थे दामनी प्रहासन सोछब निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गुड़गते रक्तासुर आचन जोध प्रमाचन हृदय नराचन धर्म ब्रते श्रोणत अचिंती अनल बयंती जो जयंती खड़ग धरे जय जय होसी मय कासुर मर्दन पाप विनाशन धर्म करे अगोग निवारण दोष प्रजारण श्रेष्ठ उबारण शुद्ध मते फणियर फुंकारण बाघ बकारण शत प्रहारण साध मते सैति स्नान अष्ट प्रवाहन बोल निवाहन तेज तुलंग जय जय होसी मय कासुर मर्दन भूम काल पताल जलंग चाचर चमकारण चिच्छुर हारण धूम दकारण द्रव मथे दाढ़वी प्रदंते जो जयंते मनुज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद्र प्रकाशन सूरज प्रतेजन अष्टभुजे जय जय होसी मय कासुर मर्दन भरम विनाशन धर्म ध्वजे घुंगरु घमंकण छत्र झमंकण फणियर फुंकारण धर्म ध्वजे अष्टाढ़ प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दोष प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाहे शोध सनाय अगमत है एक वृते जय जय होसी मय कासुर मर्दन आद कुमार गाद वृते सुर नर मुन वंदन दोष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन वृत मथे कावरु कुमारे अधम उदारे नरक निवारे आद कथे किंकणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंगारोहण बितल तले जय जय होसी सब ठौर निवासन बाय पताल कास अनले संकटि निवारण अधम उदारण तेज प्रकरकण तोंतबे दुख दोग दोहंती ज्वाल जयंती आद अनाद गाद अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जीवे जय जय होसी शास्त्र प्रकरखण आद अनिल अगाद अभे चंचला चखंगी अलग भुजंगी तुम तिरंगन दच सरे कर कसा कुठारे नरक निबारे अधम उधारे तूर भुजे दामनी दमंके के हरलंके आद अतंके कुरूर कथे जय जय होसी रक्तासुर खंडन सुम चक्र निसुम मथे बारज विलोचन ब्रितन विमोचन सोच विसोचन कौज कसे दामिनी प्रहासे सुखसरनासे सुभ्रि सुभासे दोष्ट करसे चंचला प्रंगी भेद प्रसंगी ते तुरंगी खंड सुरंग जय जय होसी मय कासुर मर्दन आद अनाद गाद उर्धंग घंटका विराजय रुणजुण भाजय भ्रम भय भाजय सुनत सुरंग कोकल सुन लाजय कल्पिक भाजय सुकुप राजय मद उरंग दुर्जन दल दज्जय मंथन रज्जय सबह न भजय रोरणंग जय जय होसी मय कासुर मर्दन चंड चकर्दन आद गुरंग चाचरी प्रजोदन दोष्ट विरोधन रोज अरोधन क्रूर वृते धूमराज विधुंसन प्रलय प्रजुंसन जाग विधुंसन शुद्ध मते जालपा जयंती सत्र मथंती दोष्ट प्रदाहन गाढ़ मते जय जय होसी मय कासुर मर्दन आद जुगाद गाद गते खत्रियाण खतंगी अभय अभंगी आदनंगी अगाद गते बृढ़ लाज बिहंडन चक्षुर दंडन तेज प्रचंडन आद वृते सुर नर प्रत पारण पति धारण दोष्ट निवारण दोग हरे जय जय होसी मय कासुर मर्दन वैश्व विदन श्रेष्ठ करे दामिनी प्रकाशे अंतर नासे ज्योत प्रकाशे अतुल बले दानवी प्रकरखण सर्वर वरखण दोष प्रधरखण बितल तले अष्टायत बाण बोल निबाहण संत पनाहण गुड़ गते जय जय होसी मय कासुर मर्दन आद अनाद गाद वृते दुग दोग प्रवच्छन सेवक रक्षण संत प्रतक्षण शुद्ध सरे सारंग सनाए दुष्ट प्रदाय अर्दल गाये दोग हरे गंजन गुमाने अतुल ब्रह्माने संत जमाने आदंते जय जय होसी मय कासुर मर्दन साध प्रतंजन दुष्ट हंते
कारण करीली गर्भ गहिली जो जतीली तुन मते अष्टाय चमकन छत्र झमकन दामिन दमकन आदृते डुगडुगी दबंके बाघ बबंके भुजा फरंगे शुद्ध गते। जय जय हुसी मय का सुन मर्दन आज जुगादन आदमते चचरासुर मारण नरक निवारण पते धारण एक भटे पापान बिहंडन दोट प्रचंडन खंड खंडन काल कट्टे चंद्रानन चारे नरक निवारे पते धारे मुंड मथे। जय जय हुसी मय का सुन मर्दन धूम्र विदंस आदि कथे रक्ता सुन मर्दन चंड चकर्दन दान और दन बिडाल बधे सरदार बिभरकन दुर्जन धरकन अतुल मरखन धर्म झुजे धूमराज विदुंसन सुवर्ण चुनसन सोमनिपाद निशुंभ मथे। जय जय होसी मय कासुर मर्दन आद अनिल अगाध कथे तब प्रसाद पादरी छंद तुम कहो देव सर्वंग विचार जिम कियो आप करते प्रसार जदब अभूतन भय अनंत कहो तव कहो जथा मत रैन तन करता करीम कादर कृपाल अद्भय भूतन भय दयाल दाता दुरंग दुख दोग रह जय नेत ने सब वेद कहत कई ऊंच नीच की नो बनाओ सवार पार जा को प्रभाओ सब जीव जंत जानंत जाय मन मूड क्यों ना सेवंता है कई मूड पत्र पूजा करन कई सिद्ध सा सूरा सिवंत कई पलट सूरा सिद्धा कराए प्रभ एक रूद वह कह लखाए अन छज तेज अन भय प्रका दाता दुरंग अद्भय अनाथ सब रोग शोक ते रहत रूप अन भय काल अक्षय स्वरूप करुणा निधान कामल कृपाल दुख दोग हर दाता दयाल अंजन विहीन अन भंजना जल थल प्रभाव सर्वत्र सार जय जात पात नहीं भेद भ्रम जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय सत्र मित्र दो एक सार अच्छा सरूप चल पार जानी ना जय जय रूप रे कह बास तास कह कौन भेग कह नाम तास है कमल जा जय सत्र मित्र नहीं पुत्र भ्रात करुणा निधान कारण स्वरूप जय चक्र चैन नहीं रंग रूप जय खेद भेद नहीं कर्म काल सब जीव जान की करंद पाल उर्दंग विराज सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग अपाल युद्धंग अनूप जय रूप रेख नहीं रंग राग अनछिज तेज अनभिज अदाग जल थल मही बंतन दुरंत जय नेत नेजन उचरंत पायो न जय जय पैर पार दीनान दोग दहता उदार कई कोट इंद्र जय पान हार कई कोट रुद्र जुगिया द्वार कई वेद व्यास ब्रह्मा अनंत कह जय नेत नेत निज दिन उचरंत तो प्रसाद सवै

आने धे दोखन देखत है पर देत न हरे। दास दुखन को दल दुजन के पल में दंडार है खंड खंड प्रचंड पहारन पूरन प्रेम की प्रीत संभार है। पार न पाए सके पदमा पद भेद कते भेद उचार है। रोजी ही राज लोक राज रोग रोहान की रोजी ना टार है। कीट पतंग घुरंग जंगम भूत भविक भवान बनाए देव देव खपे हमे न भेव लखे भ्रम सिंबर माए। वेद पुराण कतेब गुरान सेव थके कर हाथ ना आए पूरन प्रेम प्रभाव बिना पत सिंह के श्री पदमा पद पाए। आद अनंत अगादत भेग सो भूत भवेक भवान वह है अंत विहीन नातम आप दागा दोग अछेद्र अच्छा है। लोगन के करता हरता जल में थल में भरता प्रवह है। दीन दयाल दयाकर श्रीपत सुंदर श्रीपद मापद ए है। काम ना क्रोध ना लोभ ना मोह ना रोग ना सोग ना भोग ना भय है। देव विहीन सने सबोतन ने व्रक्त गह चह है। जान को देत जमीन को देत जमान को दह है। काहे को डोलत है तुमरे शुद्ध सुंदर श्री पद्मापद लय है। रोगंते अर्थोगंते जल योगंते भवभान बचावे शत्रु अनेक चलावत घा तऊ तन एक न लागन पावे। राखते अपनो कर दे कर पाप समूह न भेटन पावे। और की बात कहा कह तो ससो पेट ही के पट बीच बचावे। जाज भुजंग सो दानव दे अभे तुम्हें सब ही कर ध्यावे। भूम काल पताल रसा चल जाज भुजंग सब सिर न्यावे। पाए सके नी पार बाहू को नेत ही नेत वेद बतावे। खोज सके सब ही कुजिया सुर हार परे रात न आवे। नारद से जतना नंद से रूम नारी से सब हो मिल गायो। भेद कते ना भेद लगे सब हार परे रात न आयो। पाए सके नी पार बाब से सनातन तन ध्यायो। ध्यान धरो तय को मन में जह को अमितो सब जग छायो। वेद पुराण कते पुरा भेद निर्पाण सब बजहारे। भेद न पाए सके उन भेद को खेदत है छेद पुकारे। रागना रूपना रेखना रंगना सागना सोगना संग तिहारे। आदे अनादे अगादे अभेग अद्वेग जबियति निकुलतारे। तीरथ कोट की ऐशना दिए बोदान महाव्रत धारे। देश भरियो कर दे भेष तपो धन के धरे ना मिले हर प्यारे। आसन कोट करे अष्टांग धरे बोन्याज करे मुकारे। दीन दयाल काल भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे। तो प्रसाद कपित अत्र के चलैया छत छत्र के धरैया छत्र धारे के छलैया में सतरन के साल है। दान के दिवैया महमान के बढ़िया अवसान के दिवैया कटैया जाम जाल है। जोध के जितया विरध के मिटैया माँ बुद्ध के दिवैया माँ मान हु के मान है। ज्ञान हु के गाता माँ बुद्ध ताके दाता देव काल हु के काल माँ काल हु के काल है। पूर्वी ना पार पावे हिंगला हिमालय जावे गोर कर तेजी को निगावे तेरे नाम है। जोगी जोग साधे पवन साधना की तेग बादे आरब के अरबी आराध तेरे नाम है। फरा के फरंगी माने कंधारी कुरेसी जाने पश्चम के पश्चिमी पछाने निज काम है। मरहटा मंगले तेरी मानसो तपस्या कर दृढ़ में तिलंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फेर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है। रो के रोहिले मांग देश के मंगेली बेर बांग से बुंदली पापुंज को मलत है। गोखा गुन गावे चीन व चीन के शीश नि आवे तिब्बती ध्याय दो देह का दलत है। जिन्हें तो है ध्यायो तिन्हें पूरन प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल सो फलत है। देव देवतान को सुरेश दान बान को महेश गंग दान को अभेद कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काउ पे नीन साध अधीन कहियत है। पाइयन अपार तेज पुंज में अपार सर विद्या के उदार है अपार कहियत है। हाथी की पुकार पल पाछे पहुंचाता है चीटी की चिंगार पहले ही सुनियत है। कहते द्वार कहते ब्रह्मा विचार कहते कृष्णा अवतार कहते राम कहियत है। कहते सस राशि कहते सूरज प्रकाशी कहते मुंडिया उदासी जो द्वार दहियत है। कहते महाधीन कहते व्यास प्रवीण कहते कुमेर कुलीन कहते जज कहियत है। करते है विचार पहना पूरन को पावे पारता ही ते अपार निराधार लहियत है। पूरा न अवतार निराधार है न पारावार पाइय न पार पे अपार कह बखानी है। अद्वै अविनाशी परम पूरन प्रकाशी महारूपों के राशि है नासी कह के मानी है।
जंत्र हुना जा जागे बाप हुना माय ताकि पूरन प्रभागी सो छटा गए मानिए तेज हुको तंत्र के राशि को जंत्र के मोनी को मंत्र निजंत्र के जानिए तेज हुको तारे के राशि को सारे के शुद्धता को हरे के शुद्धता की सार है कामना की खाने के साधना की सान है भक्तता की बाने के बुद्ध को उदार है सुंदर स्वरूप के भूपन को भूप के रूपों को रूप को मत को प्रहार है दीनन को दाता है गनीमन को गारक के साधन को रक्षक के गुणन को बहार है सिद्ध को स्वरूप के बुद्ध को विभूत के क्रोध को अभूत के अच्छे अविनाशी है काम को कुनिंदा के खूबी को दिहिंदा गनीमन गरिंदा के तेज को प्रकाशी है काल हुके काले के सतरन के साल के मित्रन को भोगते के वृद्धता की वासी है जोग हुको जंत्र के तेज हुको तंत्र के मोहनी को मंत्र के पूरन प्रकाशी है रूप को निवास के बोध को प्रकाश के शुद्धता को वास के बोध हुको घर है देवन को देव है निरंजन अभेव या देवन को देव है के शुद्धता को सर है जान को बचाए मान को दिवया जम जाल को कटे कामना को कर है तेज को प्रचंड है खंडन को खंड है महीपन को मंड है के स्त्री है ना नर है विश्व को भरने के आपदा को हरने के सुख को करने के तेज को प्रकाश है पाइये ना पार पार बार हुको पा जाओ कीजल विचार सो विचार को निवास है हिंगला हिमालय गावे हबसी हलबी धावे पूर्वी ना पार पावे आशा ते अनास है देवन को देव माँ देव हूँ देव है निरंजन अभेव ना जदया विनाशी है अंजन विहीन निरंजन प्रवीण के सेवका धीने कटैया जम जाल के देवन के देव माँ देव हूँ देवनाथ भूम के भुजैया मुहया माँ बाल के राजन के राजा माँ साज हूँ साजा माँ जोग हूँ जोग दरैया ध्रुव छाल के कामना करे के बुद्धता को हरे के शुद्धता की साथी के काल है कुचाल के छीर कैसी छीरा व छाज कैसी छतरा ने छपा कैसी छप कालिंद्र के कुल के हंस निशी सिहारूम हीरा सी हुसैनाबाद गंगा कैसी धार जली सातो सिंध रूल के परासी पलावगढ़ रूपा कैसी रामपुर सोरासी सुरंगाबाद निके रही झूल के चंपासी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदागढ़ कीरती हरी रही मालती सी फूल के फटक सी कैलाश कमावगढ़ काशीपुर सीसा सी सुरंगाबाद निके सोई अत है हिम्मा सी हिमालय हर हाप सी हल्लब्बा नेर हंस कैसी हाजीपुर देखे सुमोही अत है चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रागिर चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोई अत है गंगा सम गंग धार कांसी बिलंदाबाद कीरति हरि की उजारी सोही अत है फरासी फिरंगी फरासी से के दो रंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गाई अत है भखरी गंधारी गोर गखरी गर्दे जाचारी पौन के आहारी तेरो नाम ध्याई अत है पूरा पलाव काम रूपा कमाओ सर्व ठौर में विराजे जहाँ जहाँ जाई अत है पूरन प्रतापी जंत्र मंत्र ज्ञातापी नाद गिरति हरि को ना पार।

अच्छा सरूबा व्यक्त नाथ आ जान बाओ सर्वा प्रमाद जाता मही बंतन प्रफुल्ल सोबा बसन जाता प्रडुल्ल बन तन दुरंत खग मृग महान जाता प्रफुल्ल सुंदर सुजान खुलतंग प्रफुल्ल लहत मोर सिर ढुरै जान मन मत चार कुजरत कमाल।

सो निहाल हो जावे। सत श्री अकाल गुरबर अकाल देग तेग फते गुरपंथ खालसे दी दिना दिन चढ़दी कला रखनी सच्चे पातशाह जी महाराज।

हे निमण दे मन सतगुरु नितल दे ताने उठिया जी उठनी आसरे दे आसरे गुरु गरीब निवास जी आप जी दाज रिच कीर्तन कर दिया होनी आस पर बैठा जरूरी सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज जिना जिना में पहलो सब बैठा जरूरी सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज जी सबना दिल के लावनी चढ़दी कला बख्शनी गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे बहाने सरबत दा।